0: Lille FM, nur de her ikke megahertz.
1: आइए सुनते हैं बिना रैप वाला रीमिक्स.

0: למה לקוף בהוט?
1: למה?
2: די והי FM, נועד היא עקם מגה הרץ.
3: ए मावे सुट्टा लाफिंग
4: आहार में सुट्टा लाफिंग
1: ए लिस्ट को मावे सीमना ला
5: अमिल्ल फैसा आंदागे अमिल्ल हाशिंगडा गेल्लुन दिरुमकी किहा मोय कमे ए में मावे सुट्टा लाफिंग
6: दुमफई आहार में गे हाथुरे दुमफतु के इस्तेमाल कुरुम के साबुन दिमावा सिही मसल तोगा आहार को हम मिलियन वुरे किना मीहु मरवा कमा ताफास हिसाब तकुन दक्का फस नुजेही अवह दुमफतु के इस्तेमाल कुरुं हुट्टा लमाहिंगा
2: दिवे ही FM नुआ दिहे एके मेगाहर्ट्स

0: मी मरियम रिफ्का रशीद रिफ्का गार्ड दिवे ही एफएम दिवे ही नाइक दिवे ही नाइक
1: मोदी है एक मेगाहर्ट्ज दिवे ही एफएम